0: धर्म जित भेटे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: फिरने दी चुगी विच पहुंचे भगवान जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जा कुछ आदास छाया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जी पीरनी भुख लगी है आखो श्रीवाल पीरनी डाडी भुख लगी कुछ खिला रब नू बड़ी भुख लगी बाबा जी कलेरा वाले बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष नाम जप के नाम दी प्राप्ति नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे न भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है तुरे तां हन जेड़ा तुरिया है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरिया ही नहीं है वो पहुंच किवें सकदा गल्ली बाती तो पहुंचिया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए गल्ला नाल अजकल दी दुनिया गल्ला नाल ज्ञान चाहू

उन राक्षस का काटा सीसा, श्री अस्केत जगा के ईसा, वह अपन भ्रष्ट गगन ते पही, सबहन आन बधाई गई। धन्य धन्य लोगन के राजा, दुष्ट नाह गरीब निवाजा, अखल पवन के सृजन हारे, दास जान मोहिले हो बारे। और श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कवियों बाच बेनती चौपाई।

0: सत्य तेरे खंड सत्य ब्रह्मण सत्य तेरे नो सत्य आकार सत्य तेरे करण सब विचार सत्य तेरे अमर सत्य दीवान सत्य तेरा हुक्म सच्चा फरमान सत्य तेरा कर्म सच्चा निशान सत्य तू दाखिला करो सच्चे सब दान सच्चे सब दू
1: सच्ची तेरी सिद्ध सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुछ सच्चे बाजा नानक सत्य सच्ची जो मर जम में सुख कट महला पहला
2: वड्डी उड़े जा वड्डा ना वड्डी उड़े सत्या वड्डी उड़े निश्चल था वड्डी उड़े जाने ला वड्डी उड़े बिरसा पाओ वड्डी उड़े पुछंदा वड्डी उड़े जा पिया नानक और नक थुंजे की ता करना सरुजा
0: महला तू जा एजक सच्ची की कोठरी सच्ची कब जबा एक नाम कुमाल एक नाम कुमे करीबना एक नाम पाने कडले एक नाम आया बिचनवाज ए पी आखन जापे किशन रा नानक गुरु जाने जाको आप

0: सतकर्ता श्लोक मला पहला बिस्मार नाथ बिस्मार बैर बिस्मार जी बिस्मार बैर बिस्मार रू बिस्मार रंग बिस्मार नागे फिरे जन बिस्मार पौन बिस्मार पानी बिस्मार अग्नि खेरे बडान बिस्मार तरती बिस्मार खानी बिस्मार साधके प्राण
1: बिस्मार स्नोक बिस्मार बिजोग बिस्मार पुख बिस्मार पो बिस्मार शिफ्ट बिस्मार सला बिस्मार औदल बिस्मार दरा बिस्मार नेड़े बिस्मार दूर बिस्मार देख हादरा दूर देख बड़ान रिया बिस्मार नानक बुद्धन पूरे
0: महला पहला कुदरत से कुदरत सुनिए कुदरत

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

0: लगता है जैसे सपना बिनसत लगनाबा बारू पीत बनाई राजपत रत नहीं दिन जा तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवा
1: अजो समझ कच बिगड़ो ना अजू समझ कच बि

मांगो राम थे एक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम ओ लॉर्ड। पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

सफल हो, मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गाना। गुरबाणी गावो पाई सुख सहज आनंद गाना, तब जपते दुख जाए नानक नाम जपत सुख।

सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणी है। सतगुर की रीसै होर कच्चू पिच्चू बोल दे से कूड़ी।

सारे संत माई भाई बख्श वाली रात है, मेरा वाली रात है और मेरी सास प्यार।

कार्यतो सारे महापुरुषों ने साधा ने धन गुरु नानक अगे नमस्कार की सारे ने किया धन गुरु नानक भुखे साधुओं ने पछाड़ छका के हजूर वापस मुड़े तलवंडी के नेड़े आए कह लगे बाले नु बाले असी तो इतने बहवे तू घर चला जा। बाले ने किया बड़ा समझाया कि नहीं समझे गलती कर बैठे हैं हूं इतने रुक के बहना चाहते सतमुच बाला अपने घर आ गए कल उड़ीकता पिया नानक सच्चा सौदा करने वास्ते गया होया आया नहीं किसी ने क्यों नहीं था जी भाई बाला आ गया। अच्छा फिर नानक क्यों नहीं आया मैं क्या कल भाई बाले ने घर चला बाले जी बैठा है नानक किथे भाई बाला बोले मैं तेरे फिर पूछे नहीं बोली तीजी वेरी अवली जी किया उथे बना दिया चंगिया में लुक के बैठा क्यों क्यों लुकिया है बनाए दसो भी रुपये थानू दिते सन कितने क बना के लिया भी पच्ची बाले ने किया मैं ताजी रुपये की बना के लियाने सानू तो मूड़ी फुल हो गई है आखो श्री बने मूड़ी और किस तरह सारी विख्या कर कालू के अंदर गुस्से की ज्वाला बढ़ तेरा लाल हो गया किथे है नानक अज मैं नानक नू जीवदा नहीं छा मेरा घर उजाड़ जा रहा है नेता कालू क्रोध पिंडाल माता त्रिपा नु पता लग जाए अज बड़ा गुस्सा आया हो रहा है पता नहीं मेरे लाल लाल की करे बुलाया नहीं नानकी जी अम्मी जा तू जाके पिता नु समझा दे कोई भी 20 रुपये ही है बेबी 100 रुपये मां ने सोचिया नौजवान धी घरों पर भेज दिता है पिछे नौकर नु भेज दिता नहीं रह सकी मां आप ही मगर मगर तुर गई कालू पहुंच अगे हजूर समाधि लगा के बैठे पता नहीं कहे प्रोग्राम पे सोचते जगत जनते ठंड पाने वास्ते पता नहीं दादा कहे विचार जाते ही कालू ने हजूर की बात पकड़ के खड़ा कर लिया गुस्से लाल अखा करके गया कितने हर मेरे वीर भी कल सुनने दुनिया का दाता हजूर ने एक मेरी अखा खोल के पिता वाल तकिया फिर नजर दिखिए कर गुस्सा चंडाल ने इस चंडाल गुस्से ने की किया तेरी सास संगत मैं ते कालू का खब्बा हथ फेरा ते मेरे धन गुरु नानक की सच्ची सच्ची गल दे उत्ते चपेड़ में सोहना मुखड़ा गुलाब वाला मुखड़ा इतना सोहना मुखड़ा चपेड़ वजी गुलाब दिया पंखड़िया कुमलान लगे नीर पै गए देते पहुंच गई देवे ने सोचिया चंगे मौके से पहुंच गई आज मेरे पिताजी ने वीर वास्ते कुछ नहीं किया पर जो तेरे अगे होके तकिया की तकिया नंकारी वीर ने सोने मुखड़े से नीर पै गए उपा मार के रो कह लगे पिताजी मेरे वीर नाम है रबी वीर नाम है मैं देखी कहती है

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है? इसकी बहुत सी कारें हैं, इसकी बहुत फैक्ट्री है, इसके बहुत से बंगले हैं। नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है, वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

माली ने पानी दे दे के राखी कर करके सुंदर बगीचा तैयार किया। वेख वेख फुलां नूं खुश हुंदे बगीचे वल झाती मार मार के प्रसन्न हुंदे, मेरी मेहनत सफली होई। कोलों दी इक राही लंघिया, आवाज मार के राही नूं आखन लगा, ऐ राही आ मैं तेनूं अपना बगीचा विखावां। किड्डे सुंदर फुल खिड़े होए हन मेरे बगीचे च, राही मुस्कराया आखन लगा, रात नूं आवांगा शामी आवांगा आके तेरा बगीचा वेखांगा। राही तां टुर गया पर माली गाफल हो गया, जागया नहीं सौ गया, सुता रहा जदों जाग खुली ते सारा बाग मिध्या होया। कोई ऐसा जानवर आया, कोई गऊ मज अंदर आई जेड़ी फुलां नूं मिध मिध के, किधरे वेखो अद्धे फुल खादे होए ने, कोई खुरां थले दिते होए ने, कोई फुल उधर डिगा पिया, कोई इधर पिया, सारा बाग ही पलां विच उजड़ गया। एक एक फुल वाले निगाह मार मार के रोई जांदे, ये की बन गया, ये पलां विच सारा बाग ही उजड़ गया। गोडियां विच मुंह दे के रोई जांदे, ये हो की गया, सोच सोच के हैरान हुंदे। कोलों दी जदों राही आया ते आखन लगा, हुण विखा अपना बगीचा। ते राही दा हथ फड़के माली कहंदा, एथे मेरा गुलाब दे बूटे सन, एथे चंबेली सी, एथे आ फुल लगे सन। एक एक फुल दा नां लै लै के, बूटे दा नां लै लै के विखाउंदा है, पर कहंदा हुण ते बगीचे विच कुछ भी नहीं रहा, सारा बगीचा ही उजड़ गया है। ऐसा एक पै गया, कोई काल रूप पै गया कि मेरे बगीचे नूं पल्लां विच उजाड़ के रख दिता है मिंटां।

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नु मिलन दी जो है वो पाई है किस तरह साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिस दे द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलियां पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसणगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

0: के देहन में परम गति पाले ही है। सबको उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भक्त रविदास जी दस देहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई। बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिए नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा होर दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं कहते हैं
1: संत जना के संग मिल बारे
0: ओ कमले इधर उधर ना फिर

साथ संगत दे विच आत्मक तौर ते अंदरले जीवन वल्लों रूहानी जीवन वल्लों स्पिरिचुअल लाइफ वल्लों आत्मक जीवन वल्लों जो बिल्कुल खत्म हो चुका है मरिया होया इंसान है केंदे साधु दे टच दे द्वारा साधु दी जो एनर्जी दी फील्ड है उस दे विच आंदियां ही केंदे ओ इंसान भी द्वारा जिंदा हो जाता है उस दे विच भी रूहानी जीवन की शुरुआत हो जाती है। साध के संग सदा प्रफुल्ले साधु दे संगत दे विच हमेशा इंसान दी जो सोल है ओ डिवेलप करती है ओ ब्लूम करती है। इस करके गुरु बाबा जी भगत रविदास जी दे इस आइडिया नू बाणी दे राही सपोर्ट करते हैं उस दे नाल सहमत हैं कि गुरुआं दी भगतां दी एक ही विचार है वो ये है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जो प्राणा दा नाथ है वो सबना दा प्यारा है अगर उसनू मिलना है तो एक ही ढंग है वो है साध संगत प्रेम नाल गाओ।

उसके अंदर एक तकलीफ हुई, एक दर्द हुई है कि मेरे अंदर से अवगुण है, मंज कुचज्जी, मैं कुचज्जी है, मैं कुचज्जी हूं। जितनी देर तक इंसान इसको एडमिट नहीं करता, गोज ऑन हाइडिंग इट, अवॉइडिंग इट, वो इलाज किस चीज का कराएगा। वो कहते हैं मंज कुचज्जी अमावन डोसड़े। अमावन का मतलब होता है कि गिनती मिनती तो बाहर। कहते जेडे मेरे डोसड़े हैं, दोष हैं, वो अनलिमिटेड हैं। मेरे अवगुण जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। मंज कुचज्जी अमावन डोसड़े हों क्यों सोहरावन जाओ जियो, किस मुंह नू लैके मैं उसनू मिलन जावां। सो भगत जी की पहली जो तब्दीली है उन्होंने जीवन दे विच कि उन्होंने अपने अंदर नू सही तरह देख लिया, अपनी ट्रू पिक्चर नू देख लिया। और उस तो बाद वो कहते हैं हुण मैं कदों तक सौ सकता हाँ। कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि असी सत्संग दे विच सुन के ते चल जाइए, बाहर जाके फिर भूल जाइए। देर आर पीपल हु अंडरस्टैंड, हु लिसन, बट देन दे डोंट टेक एक्शन। फर्स्ट अवेयरनेस तो बाद एक्शन लेना बड़ा जरूरी, नहीं तो वो एक होर पैटर्न बन जाता है। देन यू क्रिएट एन अदर पैटर्न इन साइड यू कि सुन भी लिया अते एक होर आदत बना ली कि सुन के फिर चुप कर गए, फिर सौ गए। भगत जी कहते नाउ आई कैनॉट गो बैक टू स्लीप, आई विल हैव टू डू समथिंग। तो की करते हैं हुण अगली लाइन दे विच आंदा है कि वह हुण सौंदे नहीं हैं, अवॉयड नहीं करते, जाके भुल नहीं जाते। देन ही इज इन एक्शन, तो की करते हैं आओ प्रेम नाल सुनो उस लाइन नूं पहला।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी प्रफाउंडनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसे नाल नाराज हुंदे हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहते जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए तो साडियां निगाहां दे विच जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनु यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनु 10 साल पहला की करता हुंदा सी। उसनु क्रेडिट दो, उसनु शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल के विच किथे दा किथे ले आंदा है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नु ही देखना है। बाणी दे विच एक साडी जो अवस्था है, साडी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंद तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंद तह जाए। जेड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उनू त्याग दिंदी है। जह बिगंद जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी दे शुभ गुण नू जदों देखते हाँ, तो नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहते वो सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत। कहते मैं इस सारे दे सारे फौरन पाड़ सकते, डिले नहीं की। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वह कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वह उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं। पहला उसनों सुनो फिर उसका असं अर्थ करांगे।

राग गौड़ी ग्वारेरी विच ऋषभ कोमल मध्यम तीबर अते बाकी सुर शुद्ध लगदे हन। इस दे आरोह विच ऋषभ पंचम अते अवरोह विच पंचम वर्जित है। इस दी जाति औड़व शाड़व वादी गंधार संवादी धैवत अते समा शाम है। इस राग विच गुरसिख हर बोलो मेरे भाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

अकाल मूर्त अजूनी सहंगुर प्रसाद जप आप सच युगात सच है भी सच नानक होशी भी सच चक्र के नर वर्ण जात हर पात नहिंजे रूप रंग हरी पीर तू कहन सत्य है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित तुझ कहिंज भूत इंद्र इंद्राण शाहु शाहन गणिज फिर भ्रमण में ही सुर नारासुर नीत नीत बंटन कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समझ सतगुरु आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठार आर पर तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सबना भी आवारी नानक दास संत पाछा करू राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरी सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग माणिया सतगुर हुई दयाल ता जम का डर के सतगुर हुई दयाल ता सद ही सुख दयाल सतगुर हुई दयाल ता नवनिध पाइया